नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सबगुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो

जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम वै मिलत देह तर सब हूँ।

तथा सीतो सीता मैं ममा हिता के रूप न कथने जाहि ना मरह न ठागे जाहि जिनका राम वसै मन माहि तथा भक्त वसै के लोह करह अनंत सच्चा मन सोई सचखंड वसै निरंकार कर करो वेखाय नदर निहाल तथा खंड मंडल और भंडे को कथाय तयंत तथा लो लो आकार जिव जो हुकम तिवै तिवकार वेख वेखसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पावहारा धीर जो सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खलाओ अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनकाओ नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खिलै सगल जगत चंगी

चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मानिए चत्र चक्र दानिए चाचरी शांद न सत्रय न मित्रय न परम न पित्रय न कर्म न काय अजन्म न जाय न चित्रय न मित्रय परे है पवित्रय प्रधि सह अधिशय अदृश्य कृशय भगवती शंतवय प्रसाद कहते किया सिद्धि सिकिया भिज भेसा किया गंज कर्म किया पंच परम किया भिज लोक है किया दित सुख है कि भूत भरने के विभूत करने के राजम प्रवाह के भरम तो जा है के आसोक परने के सर्वा परने के जग पंकृति है कि शत्रंग क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप है के अनुपहन रूप है के आदा देव है के आप अपेव है कि चित्रंग महीने के अधीन है कि रोजी रजा के रही मेरे हक है

करीम है कि सर्वं कलि है कि सर्वं दलि है, सर्वत्र अवमान्य है, सर्वत्र दानी है, सर्वत्र गौण है, सर्वत्र पौन है, सर्वत्र देशा है, सर्वत्र पेशा है, सर्वत्र सर्वत्र राज है, सर्वत्र साजा है, सर्वत्र दीन है, सर्वत्र लीन है, सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र भुख है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान, एक सर्वत्र जापी, एक सर्वत्र थापी, एक सर्वत्र पान, एक सर्वत्र मान्य, एक सर्वत्र इंद्र, एक सर्वत्र चंद्र, के सर्वं कली में, के परमंग फही में, के आकल अला में, के साहिब कलाम में, के हुस्न वजू है, तमाम रुजू है, हमें सुर सलाम है, सली खत्म उदा में, गनी मुल शिकस्त है, गरीब उल परस्त है, बिलंदुल मकान ने, जमीन उल जमान ने, तमीज उल तमाम में, रजूल निदान ने, हरीफ उल अजीम में, रजायक यकीन ने, अनेक उल तरंग है, अभेद है, अपंग है, आजीज उल निवाज है, गनीम उल खराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सुजुक्त सुधा है, सदैवं स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्त उपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम है।

किन्नरकम प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद

आसन चिंत है सुनिंत है आलिख है आदिख है आलेख है अपेख है अटह है अगह है असंभ है अगंभ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शांत है प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं योक्ता सर्वं

मह मंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्वोबारण है, त्रित की तरन है, जग की करण है, मन मानिय है, जग जानिय है, सर्वंपर है, सर्वंकर है, सर्वपाशी है, सर्वनाश्य है, करुणाकर है, विश्वंपर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणाकर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अमृता अमृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणीकृत है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृता अमृत है, अजवाकृत है, अमृता अमृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वंबर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्वायक है, भव भंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्मा है, सर्वात्म है, आत्मबस है, जस के जास है, पुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संताम संसात रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादम विभूते कलंकर रूपे, अलंकार अलंके, नमो आश्वासे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामी, त्रिपंगी त्रिकालने, अनंगी अकामे,

जति जत धार सभै सुभ चार हजार देखै। श्री भगवान भजे मिन भूपत एक रती मैनू एक ना लेखै। शुद्ध सपाह दुरंत बहा सुसास नह दुरजान दलेंगे। भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंखा हले ना हलेंगे। तोर अरीन मरोर मवासन मातम।

चाहो पाई संबत 1765 जय अर्थ सहस फुन तीन के हित जय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर सुतुद्रव ग्रंथ सुधा ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जपते तुमरे तपते को आकरे नहीं आन्यो राम नहीं पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब वेद कहे हम एक न जान्यो

हर गाव मंगल नित सखिए शोक दुख ना व्यापे गोर चरण लागे दिन सुभागे अपना प्रजा पे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो

संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवेता सतगुर रहया पर पूरे बिरवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद तूरे।

सतगुरु मिल पैन के हृदय सच बसाया मूर्ख न जाना ने मुन मुख जन्म गवाया कुछ दुनिया का है आया।

निर्मल हर पाया हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी संत जना बड़ भागी पाया।